0: about a decade ago, Shahid Afridi's statement on women cricketers had raised a lot of accusations of him being a misogynist.
1: क्रिकेट जो है ना वो जब तक खून में ना हो ना आप क्रिकेटर नहीं बन सकते. हमारी लेडीज जो है वो खाना अच्छा बनाती हैं. लेकिन बात सुने, सीधी सीधी सी बात है, अब आप चाइना वाले जितनी भी दुनिया में तरक्की कर ले उनके खून में क्रिकेट नहीं बसी हुई, वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते. हमारी औरतें माशाल्लाह से खाना अच्छा बनाती हैं, इनके खून में.
0: फतिमा सनाज रिमार्क इज श्योर टू किक अप अ स्टॉर्म इन पाकिस्तान. द विमेन्स क्रिकेट कैप्टन रिसेंटली हेल्प्ड द साइड विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन गेम्स. Overall, she has been one of the best performers for the Pakistan women's team in the recent past. At the age of 24, she has already played 64 ODIs with 85 wickets with one 5-wicket haul. In T20Is, she has an impressive 72 wickets. Fatima Sana has been the lone bright spot for Pakistan in a time when the team has not been doing well on the international stage.

0: village in Maharashtra has put itself on sale. People of Tulsi village in Solapur want any of India's rich industrialists to buy them out. All they want in return is water. Villagers claim they resorted to this unique protest after their pleas for water were ignored by authorities.
1: आप बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ कर देते हो, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी। हमारा तो एक छोटा सा गांव है, हम पर बस इतना ही कृपा कीजिए सरकार कि हमारा गांव जो है ना वो खरीद लीजिए।
2: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति है इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो हमारे गांव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है। कोई भी माई का लाल हमें पानी दे दो, जल दे दो और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: The Sina Madha Lift Irrigation Scheme, which draws water from the Ujjaini Dam, a lifeline for Madha Taluka, has been operational since 2000. But Tulsi village somehow wasn't included. After long protests, Tulsi was finally covered under the scheme, but water is yet to reach it. So, the villagers are totally dependent on tankers, especially in this drought year.
3: आपके बच्चे किधर जाते हैं, स्कूल में, नौकरी में?
4: बच्चे स्कूल को एक है उधर पुणे को, हाँ। ये गांव को आए।
3: इधर नौकरी नहीं क्या कुछ?
4: नहीं, नौकरी नहीं। हमारे कैश नहीं ना, पानी भी नहीं, काम आ नहीं, कैसा खाने का, कैसा पीने का, रहने का कैसा?
3: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
5: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रही गांव में। पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या इतना हम कैसे लड़की देगा, लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: नो वाटर टू ड्रिंक, नो वाटर फॉर फार्मिंग। Tulsi is desperately looking for help. With Nitin Shinde, Bureau Report, India Today.
6: Okay, that's all that we could pack in on the show tonight. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के लिए।

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के लिए।

0: confuse a bit of a wind getting trapped or a bit of a gastric thing to discomfort? Like, how do I know this is a heart related issue or this is a gut related issue?
1: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजमा खा लिए थे रात को या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजीन खाते रहे. बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल द हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज 8 to 10 hours हैव पास्ड बाय. दिस इज द वेरी राइट पॉइंट यू आस्क. मैं तो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं चाहता बिकॉज द कॉमनेस्ट सिम्टम इज अ प्रेशर ऑन द चेस्ट विच गोज डाउन द आर्म व्हेन यू एक्सरसाइज. इट कैन गो अप ऑल्सो द नेक. And it goes away when you sit down or stop in the next 5 minutes.
0: Okay.
1: But some people will get actually a gastritis. Jalan si ho rahi hai. Gas si lagti hai mereko chalne mein. But main ruk jata hoon aur do digestion kha leta hoon to theek ho jati. Don't. Anything which is coming on exercise, including breathlessness, including pain even in the back on exercise, pain in the jaw on exercise and brisk walking should not be ignored because exercise related any form of discomfort including gas is likely to be heart problem. Ye jo gas wali feeling hai na, that also constitutes at least 20% to 15 to 20% heart attack. So ye bhi ek bahut important message hai ki agar wo gas unusual hai to a person जिसको कभी ये एसिडिटी होती नहीं थी या आपने एक डाइजीन की टैबलेट ली और 15-20 मिनट में एक आधे घंटे में रिलीफ नहीं मिली, प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. एक ECG जरूर करा लें. अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस ना करते रहें बिकॉज ECG से ही हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है. हार्ट अटैक से बचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है. सो डोंट टेक दीज डिसीजंस योरसेल्फ.
2: Love a smartphone, free home service.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: Panel, one board, infinite users.
3: म्यूचुअल फंड्स सही है,
4: गिरनार एक चाय हो जाए,
2: एक्सिस बैंक दिल से ओपन,

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
1: Money, money, money, money every month.
2: सोच बदलो और बैंक भी.
3: मेन इशू वोट की जो चोरी हुई है, सब पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी आर पनिश्ड. Doesn't matter how senior they are, who they are, Indian democracy is bigger than every single person in this country.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

मेन इशू वोट की जो चोरी हुई है, सब पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी आर पनिश्ड. डजंट मैटर हाउ सीनियर दे आर, हु दे आर, इंडियन डेमोक्रेसी इज बिगर देन एवरी सिंगल पर्सन इन दिस कंट्री.

0: गवर्नमेंट को जगह जगह इस तरीके के कैंप और चलाने चाहिए, तो छोटी सी जगह के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं।
1: आपको ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, दिल्ली पोल्यूटेड सिटी है, तो आपको भी एक मतलब रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह लेना चाहिए PUC अपनी गाड़ी के लिए। बाकी उसके अलावा गवर्नमेंट को और भी इश्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए, मतलब ये एक अकेला रीजन नहीं है पोल्यूशन का, तो गवर्नमेंट को अलग चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए।
2: ग्राउंड लेवल पे अगर कोई व्हीकल पोल्यूशन कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट एनी हाउ मिलना ही नहीं चाहिए, तो एक स्टेप तो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे आप इसको ठीक कीजिए। और दूसरा नहीं, गुड इनिशिएटिव, हम भी दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली दिसंबर तक जाकर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता।
3: So no PUC, which is pollution under control certificate, that means no fuel for you in Delhi NCR. So get your certificates checked. If it has expired, renew it as soon as possible. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. And do stay with us for So South on the other side.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के लिए।

0: open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: FDA has stepped up its crackdown on restaurants over food safety and hygiene. Now, a disturbing complaint from Borivali West. A customer claims he found a dead mouse inside his Mysore Masala Dosa at Radhakrishna Hotel. Amit Trivedi says he had eaten a few bites before spotting it and began vomiting. He approached the police, who forwarded the complaint to the FDA, which has now suspended the restaurant's license and launched a probe. But as the FDA tightens the screws on restaurants across Maharashtra, the crackdown itself is now facing questions. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has claimed that some FDA officials are demanding bribes from businesses facing action. In a letter to FDA Chief Tukaram Munde, Raut claimed restaurant owners were being asked to pay money to withdraw closure notices or restore suspended licenses, and that some demands were running into lakhs of rupees. Munde says he has zero tolerance for corruption, but action can only follow concrete evidence.
1: I have zero tolerance for corruption. I am not going to tolerate any extortion किया है, threat दिया है, misuse किया है, या पैसे मांगे हैं, या कोई और कुछ मांगा है. मुझे details दो, मैं definitely कार्रवाई करूंगा, but मुझे कुछ तथ्य चाहिए, facts चाहिए, तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे.
0: For the FDA, violations mean action. But now the crackdown itself faces scrutiny amid corruption allegations. Bureau Report, India Today.
2: So sorry.
3: आटो हजरातो खवातीन जरा मुआइजा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए. खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए. अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए. हजरात यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए. हाँ तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए. और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए. मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए. झिझकिए मत, खुद को बीबी का गुलाम कीजिए. और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है. और फरमाइए, इसी से खत्म मतलब खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार. घर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार. यूसीसी आदावर जो है.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: Can you tell the difference between analog paneer and real paneer?
1: Just one that iodine test.
0: Iodine कौन जाके टेस्ट करता है? क्या आप पालक पनीर कहीं ऑर्डर करने से पहले iodine डाल के टेस्ट करते हैं? और एक्यूरेट भी नहीं है. Did you guys know that? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में. FSSAI wants to ban analog paneer, but hold on, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये पास भी हो गया उसके बाद बिकना मार्केट में बंद हो जाएगा. FSSAI सिर्फ कह रहा है कि अगर आपने दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल, स्टार्चेस, इमल्सिफायर्स यूज करके पनीर बनाया है तो उसको आप पनीर बुला नहीं सकते हैं, उसको आप नए नाम से बेच सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क कैसे हमें समझ में आएगा. सो आपको कुछ सिंपल टेस्ट बताते हैं जिसके लिए हमने बात करी है डॉक्टर मंजरी चंद्रा से. फर्स्ट वेरी सिंपल टेस्ट, सिर्फ उसको आप फील करके बता सकते पनीर है कि ये एनालॉग है. अगर आप रियल पनीर लेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये एकदम क्रम्बल हो जाएगा, थोड़ा ग्रेनी होगा और अनइवनली ब्रेक करेगा, लाइक दैट. एनालॉग पनीर ऑन द अदर हैंड इज स्प्रिंगी, रबरी, ऑलमोस्ट टू स्मूथ एंड परफेक्ट. वो आपके हाथ में इनफैक्ट क्रम्बल भी नहीं करेगा. रियल पनीर ऑल्सो फील्स वेरी मॉइस्ट एंड मिल्की, लाइक मेरे हाथ में ऑलमोस्ट दूध जैसा टेक्सचर आ गया था. एनालॉग पनीर को अगर आप बहुत हाथ में मसलते भी हैं तो हाथ में ऑयली सी लेयर देगा. देयर इज अ डिफरेंस, सो अंडरस्टैंड दैट. एक दूसरा टेस्ट आप कर सकते हैं, सिंपल पैन टेस्ट. एक गर्म पैन पर बिना ऑयल के एक क्यूब पनीर आप गिरा दीजिए. अगर वो ब्राउन हो जाए, उस पर क्रस्ट फॉर्म हो जाए पर अंदर से वो सॉफ्ट रहे, ऐसे ही क्रम्बल हो रहा है, तो वो रियल पनीर है. एनालॉग पनीर जो होगा वो ऑयल स्वेट करेगा एंड इट विल गो लिम्प एंड गमी, राइट? इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक रबरी इन टेक्सचर. थर्ड पॉट सिंपल टेस्ट है इसे टेस्ट करने के लिए. रियल पनीर जो है इट्स ग्रेनी, इट्स अ लिटिल सार एंड इट्स माइल्डली मिल्की. एनालॉग अगर आप खाएंगे तो वो आप

एक और तरीका है, बहुत इंटरनेट पे वायरल है, आयोडीन टेस्ट. बट आई रियली वॉन्ट टू नो कितने लोग जाकर अपने खाने में आयोडीन डाल के टेस्ट कर रहे हैं. एंड ये भी जान लीजिए, आयोडीन जो है वो सिर्फ स्टार्च पर अपना कलर टर्न करता है. तो अगर एनालॉग पनीर सिर्फ ऑयल से बना है और उसमें स्टार्च कम है, तो आपका फेक पनीर आपका टेस्ट पास कर जाएगा. फिफ्थ, इट्स द प्राइस. देखिए, एक किलो पनीर बनाने के लिए लगभग 5 लीटर दूध लगता है. सो इफ यू डू द मैथ, इट विल कम टू अराउंड 300 to 400 rupees फॉर अ किलो ऑफ पनीर. अगर उससे सस्ता आपको मिल रहा है तो वो डेफिनेटली पनीर नहीं है. अगर आप पैकेट वाला पनीर खरीद रहे हैं तो सबसे अच्छा टेस्ट है उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना. ये दूध से बनाए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट में सिर्फ दो चीजें हैं, मिल्क सॉलिड्स एंड सिट्रिक एसिड, दैट्स इट. अगर आपके इंग्रेडिएंट्स पे पाम ऑयल लिखा है, वेजिटेबल फैट लिखा है, स्टार्च लिखा है, एमल्सिफायर लिखा है, तो फिर वो एनालॉग है. Also to tell you, analog is not poison. It's just that it is not made for milk products. But usually usme protein less hoga, calcium less hoga, fat jo hai wo vegetable oil ki wajah se kafi zyada hoga.

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के लिए।

कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी

0: उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
1: Powered by Air India, new feels good. Co-powered by Veka, India's largest selling UPVC window. Co-powered by Star Health Low, stress nahi.
2: Girnar, ek chai ho jaye.
1: Axis Bank, dil se open.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल
1: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

0: कीजिए अपना नाम बताइए कौन है आप
1: It's 10:30 p.m. I was trying to approach a metro station at Lajpat Nagar, trying to take public transport home, which most women like me do at this hour. And sadly saw the story on the roads of Delhi doesn't seem to change. The Delhi police commissioner had promised that every arterial road will have a PCR. Well, there was a PCR here, standing right there, if my camera person can actually show you. And while I was walking up to the metro station, I was teased, I was harassed by three young men. The minute they saw headlines today, cameras, they scooted.
2: पांच लड़के हमसे मिसबिहेव किया था बिल्कुल हमारे से मिसबिहेव किया था उधर आपका पीसीआर वैन बिल्कुल पीछे था आप सर तब से दो घंटे हो गए उस इंसिडेंट को हाँ जी उस इंसिडेंट को हम 10:30 पे थे अब 12 बज रहे हैं
3: ऐसा जो साहब अभी गए गाड़ी लेकर निकल के मोटरसाइकिल लगी हुई है पेट्रोलिंग में सारा
2: सर पेट्रोलिंग पर अगर मोटरसाइकिल निकली हुई थी हम वहाँ पर ही खड़े हुए थे सर उधर ये बिल्कुल हम स्टेयर्स मेट्रो स्टेशन में हम जा रहे थे सामने सामने उधर और आपका सर अभी तक मूव नहीं हुआ है यहाँ से पीसीआर हमने वेट किया कि आप देखेंगे क्योंकि वो आए हमसे हमारे से उन्होंने छेड़खानी की
3: कॉल मिल जाती है उस पे जाती है गाड़ी उसके बाद स्टेट पे खड़ी करेंगे
2: सर आप लोग देखते नहीं है आपके बिल्कुल सामने क्या हो रहा है
3: मोटरसाइकिल भी है
2: सर यहाँ पर आप अभी तक एक मोटरसाइकिल नहीं पास हुई है हम तब से यहीं पर ही हैं आपने वो
0: दिल्ली पुलिस ने वादा किया था आपसे हमसे कि सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ेगी बीच स्टाफ ज्यादा मौजूद रहेंगे सड़कों पर बसेस पर जितने भी नियम है उनका पालन किया जाएगा ऑटो रिक्शा को लेकर जरा सख्त रवैया अपनाया जाएगा लेकिन क्या वो सब कुछ हो रहा है यही जानने समझने की कोशिश करेंगे तो बाइक में सवार होकर ये देखिए लगभग 10 बजे के आसपास बाइक पर

यहाँ पर जैसा कि आपने देखा अक्षरधाम के पास एक गाड़ी तो पुलिस की खड़ी है, ये किसकी सुरक्षा के लिए है ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अंदर तमाम जितने भी लोग हैं वो सभी सो रहे हैं। ऐसे में ये किसकी सुरक्षा करेंगे, अपनी सुरक्षा कर ले ऐसे में यही बहुत बड़ी बात होगी। इस एरिया में

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: भ्रष्टाचार होता है, मगर जब हमारे आदिवासी भाइयों को जरूरत है, आप गायब हो गए।
1: सरकार जवाबदारी नहीं लेना चाहती है, प्रशासन की मौतों के आंकड़े छुपा रहा है। क्यों छुपाना चाहता है? क्या आपकी नौकरी पे आ जाएगी? क्या उन परिवारों के जो बच्चे शांत हुए उनकी माओ से पूछो। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री तिरंगा फहराने के पहले बालाघाट के आदिवासी बच्चों के बारे में सोचे।
2: While politics continues, for these families, the loss is irreversible. The question remains, why did the system fail to protect these children? With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
3: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
4: You are watching India Today.

कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।

कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।

0: सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.
3: More than 30 children have died this year in Madhya Pradesh's tribal Balaghat belt, with investigations pointing to malaria and measles as the primary causes. But the tragedy has exposed a larger crisis: missed vaccinations, rising malnutrition and disrupted nutrition supplies. Take a look.
4: More than 30 children dead this year in Madhya Pradesh's Balaghat tribal belt. Disease